0: क्या मस्त कलर्स हो रहे हैं।
1: इतने कलर मैंने पेड़ पौधों पे मैं देखूंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था।
0: एक्चुअली व्हेन यू गो टू दैट विंड फार्म, विंडमिल फार्म ऊपर, तो वहां से देखो कितने प्यारे रंग दिखते हैं। वैसे भी मतलब यू नो यू गो टू समर हिल उस तरफ दिखते हैं, यू गो टू मेसी यूनिवर्सिटी उस तरफ बहुत दिखते हैं, ब्रिज की तरफ जाओ वहां बहुत दिखते हैं, न्यू ब्रिज की तरफ। सो इतने ब्यूटीफुल कलर्स, यू राइट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ लाल हो सकते।
1: हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसे कभी सोचा नहीं था कि मेरे को पेड़ पे पीच कलर दिखेगा
0: बिना फूल के, मतलब पेड़ पे कलर इज लाइक फॉर अस इट्स लाइक ग्रीन ब्राउन एंड कलर ऑफ द फ्लावर।
1: पत्तों की बात कर रहा हूँ।
0: हाँ
1: मैंने इसे कभी सोचा नहीं था। एंड देयर इज दिस वो चेरी ब्लॉसम का पेड़,
0: हाँ पिंक,
1: हाँ तो नॉट ओनली चेरी ब्लॉसम का कलर अलग है, ठीक है, मतलब बहुत अलग है, बट उसके पत्तों का भी कलर अलग है।
0: या दैट्स ट्रू,
1: मतलब उसके पत्तों पे भी कलर है,
0: पत्तों पे ग्रीन कलर है, बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री।
1: हाँ और अभी बिकॉज वो भी झड़ रहे हैं उनका भी कलर येलो मरून ऐसे हुआ जा रहा है।
0: नहीं वो तो है, बहुत ब्यूटीफुल है। साउथ आइलैंड में ना एक जगह है,
1: साउथ आइलैंड में बहुत जगह है,
0: मतलब एक जगह है जहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं। आई वाज देयर लाइक फ्यू इयर्स अगो, आई वाज देयर ड्यूरिंग दिस टाइम अप्रैल मई में मैं वहाँ पे थी और मुझे मतलब आई टुक सम फोटोज एंड आई फेल इन लव विद दोज फोटोज बिकॉज ऑफ द कलर्स। So if somebody asks me what is your favorite season in New Zealand, I always say autumn. I know the summer bhi hai, but autumn is like because of the colors, I just love autumn.
1: For me, autumn has been like very short, always.
0: Okay.
1: ठीक है, up until
0: short ही होता है ना?
1: हाँ मतलब short, मतलब इतना short के मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि autumn exactly होता क्या है, ठीक है, क्योंकि बीइंग इन मुंबई मेरे को इतना ज्यादा कुछ दिखा नहीं था या फिर मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया था, बट यहाँ पे इट्स जस्ट डिफरेंट। ओके एंड पामी में देयर इज अ प्लेस, देयर इज अ स्ट्रीट,
0: कहाँ पे
1: पामी में देयर इज अ स्ट्रीट, एलमीरा स्ट्रीट,
0: ओके
1: वो मेरा फेवरेट स्ट्रीट है।
0: अच्छा
1: किसी ने मेरे को दिखाया था कि ये एक स्ट्रीट है, मतलब मैं पैकेज से जा रहा था फ्लैटमेट के साथ जा रहा था, तो उसने मेरे को बोला था मैंने तेरे को एक जगह दिखाता हूँ, ठीक है दिखा मेरे को। तो ऑन द वे टू पैकेज से उसने वो एलमीरा स्ट्रीट से लिया।
0: अच्छा
1: तो उसने मेरे को बोला कि ये वाला स्ट्रीट ना मेरा एकदम फेवरेट स्ट्रीट है।
0: अच्छा
1: मैं उसको पूछा कि क्यों, तो उसने बोला कि तू अब देखेगा तब तेरे को खुद पता चलेगा। सो दैट्स वन स्ट्रीट जहाँ पे दोनों साइड पे सेम पौधे, सेम पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, और वो दोनों साइड से ऐसे एक टनल बनाते हैं।
0: अच्छा
1: ओके ना द थिंग इज ऐसा तो बहुत सारी जगह,
0: बहुत सारे जगह
1: पे
0: ऐसा, तो इंडिया में भी काफी जगह पे हमने देखा।
1: हाँ लेकिन ये वाले स्ट्रीट पे ना पता नहीं क्यों इट फील्स सो सिमेट्रिक।
0: ओह वाओ ओके
1: दोनों साइड पे पौधे ऐसा लगता है कि इट इज सिमेट्रिक एंड नॉट जस्ट दैट इट कुड बी द ट्रीज, इट कुड बी समथिंग एल्स और व्हाटएवर। हमेशा ऐसा लगता है कि जो पत्तियां है ना दे आर ग्लोइंग। हाँ ऐसा नहीं लगता है कि सनलाइट इज पासिंग थ्रू द लीव्स, ऐसा नहीं लगता।
0: Wow.
1: ऐसा लगता है कि
0: वो becomes a canopy kind of thing.
1: It becomes a canopy.
0: Yeah.
1: और मेरे को नहीं पता कि वो स्ट्रीट में क्या स्पेशल है या फिर वो पेड़ों में क्या स्पेशल है, पर इट लुक्स वेरी नाइस।
0: जब मैं पहली बार न्यूजीलैंड आई थी ना तो मैंने क्राइस्टचर्च में लैंड किया था एंड देन आई फ्लू टू वेलिंगटन एंड देन आई केम टू पामी ऑफ कोर्स। तो मैं जब पामी आई और बाकी जगह पे मैं सोच रही थी यार ये मतलब कोई जगह कोई पेड़ के पत्ते इतने साफ कैसे हो सकते हैं।

0: मुझे ऐसा लगता होता कि ये लोग रोज सुबह पानी डालते होंगे, मतलब ऐसा ना पानी छिड़कते होंगे, करते होंगे. But I saw there is nothing like that. It is the environment, because it is so clear, it is so clean, it is so beautiful. So वो जो green and clean का जो है ना New Zealand का, so it's quite apt.
1: जब मैं आया था, so that was the 17th of February.
0: वाह, date भी याद है सर को.
1: हाँ, date भी याद है. नहीं, actually, sorry, 15th of February.
0: अच्छा.
1: Sorry. 15th of February was the day, and 17th of February was the first day जब मैं university में entry किया था. मैं ये main road से entry किया था, जिधर वो left side पे stone
0: पे लिखा हुआ है, stone से लिखा हुआ है ना, MS University,
1: वो वाला रास्ता. ये ag research के opposite वाला, वहाँ से मैंने enter किया था. So that was the 17th. But 15th को जब भी मैं पहुंचा था, तब just like you, मैं पहले क्राइस्टचर्च आया. ठीक है, क्राइस्टचर्च से कलेक्टिंग फ्लाइट था मेरा पामी का.
0: अच्छा, तेरा सीधा पामी.
1: हाँ. तो मैं क्राइस्टचर्च पे उतरा, और जैसा कस्टम्स क्लियर हुआ तो ग्राउंड फ्लोर पे आया मैं. ठीक है, फिर मैंने बोला कि कनेक्टिंग फ्लाइट किधर है, तो आई हैड टू गो अपस्टेयर्स. मैं ऊपर गया और मैंने बोला कि मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहता. मेरे को बहुत भूख लगी थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नहाऊं. मेरे को लग रहा था कि मैं अभी मैं फ्रेश होना चाहता हूं, अभी मेरे को कुछ खाना है और मेरे को सोना भी है. बट मैंने बोला कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ना वॉशरूम देख रहा हूं, ना कुछ भी देख रहा हूं, ना मैं कुछ खाना देख रहा हूं. मैं पहले जाके अपने गेट पे जाके बैठता हूं. सो इट वाज अपस्टेयर्स एक लेवल पे, और वो जहाँ पे मेरा गेट था वो है, मतलब टर्मिनल में एक गेट है जहाँ पर एक ऐसी फ्लोर टू सीलिंग ऐसा ग्लास है. और वहां से आपको एयरप्लेन दिखता
0: है.
1: ठीक है, रनवे दिखता
0: है. यू कैन सी दैट.
1: हाँ, बट मतलब ऐसे वाइड नहीं था, इतना एक्सपांस नहीं था, वो पतला सा ही था. और तब हो रही थी बारिश, ओवरकास्ट था, बारिश थी. और तभी मेरे को पहली बार लगा कि मैं ऐसी जगह में आया हूँ जहाँ पे वेदर हमेशा ऐसा ही रहता है, हमेशा ओवरकास्ट रहता है, हमेशा बारिश होती रहती है, हमेशा ग्लूमी उमी सा रहता है.
0: ओह माय गॉड, दैट इज डिप्रेसिंग.
1: हाँ, मैंने बोला कि यार मैं अभी मतलब 8 घंटे पहले, 8-10 घंटे पहले मैं चंगी भी था. ठीक है, जो मजे किए मैंने एयरपोर्ट पे, बटरफ्लाई देखे, पॉड्स देखे, टर्मिनल देखे, जूल देखा, खाना खाया, घूमा मस्त. और सनी, एवरीथिंग वाज सनी. फिर मैंने एयरपोर्ट पे ये नज़ारा देखा, वेदर पे. मैंने बोला कि ओके, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो सनलाइट ग्रीन और वो सब कुछ है ना, वो इधर कुछ दिखने वाला ही नहीं, इधर मेरे को सब कुछ ग्रे दिख रहा है. अबे मेरे को सब कुछ व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, यही दिख रहा है. कोई अगर मेरे को तभी कहता कि तेरे को ये जो सीन दिख रहा है ना, दिस इज जस्ट वन पैलेट, दिस इज वन जस्ट वन
0: पैलेट, वन पैलेट,
1: और तेरे को इतने पैलेट मिलेंगे कि तू खुद डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा. मैं शायद नहीं मानता उसको, बट आई एम रियली हैप्पी कि
0: मेरे,
1: हाँ, कि मेरे को ऐसे देखने को मिलता है. जब भी रेंगेटी की स्ट्रीट से अपन फील्डिंग की तरफ जाते ना, तो जब भी शाम के टाइम में सनसेट दिखता
0: है,
1: तभी वो रास्ता देखने का
0: बहुत अच्छा है. वहाँ पे कभी कभी ड्राइव करने में इशू होता है क्योंकि सन एकदम सामने आ जाता है.
1: But then you have to observe the colors.
0: I know, beautiful. और एक और बात बतानी मुझे तुझे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट एक गाना चला दे पहले.
1: अच्छा. आज ओके, ठीक है, मैं शुभ का गाना बजाता हूँ.
0: किसका?
1: शुभ.
0: शुभ.
1: शुभ.
0: हाँ.
1: आर्टिस्ट है.
0: आर्टिस्ट है.
1: पंजाबी गाने गाता.
0: ओके, बजाइए.
1: ठीक है.

0: का गाना बजा रहा हूँ, आई थिंक फेल फॉर यू, ठीक है चलो सुनते
1: हैं। फेल फॉर यू,
0: फेल फॉर यू,
1: ये तो इंग्लिश के आर्टिस्ट लग रहे हैं।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कुछ पंजाबी गानों का ये इट्स अ थिंग कि
1: एक लाइन इंग्लिश की गुस्सा दो,
0: वो नहीं, वो तो होता ही है, बट गाने का टाइटल इज इंग्लिश।
1: अच्छा बट गाना पूरा पंजाबी,
0: गाना पूरा पंजाबी है,
1: ठीक।
0: जैसे करण औजला का गाना, गाने का नाम है, गाने का टाइटल है बॉयफ्रेंड, बट गाना शुरू होता है अबाउट अ गर्ल बीइंग सैट डाउन बाय हर पेरेंट्स, और वो उसको लड़कों की फोटोज दिखा रहे हैं।
1: अच्छा।
0: कि ये पसंद आया क्या, वो पसंद आया क्या, वो पसंद आया क्या, एंड द एंटायर सॉन्ग इज दैट गर्ल सिंगिंग टू हर मदर एंड फादर एंड एवरीबॉडी दैट आई हैव अ आई लाइक समवन।
1: अच्छा।
0: इसीलिए गाने का नाम है बॉयफ्रेंड,
1: बॉयफ्रेंड,
0: ठीक है, इंग्लिश। एंड देन देन शुभ का देयर इज वन सॉन्ग मुझे पसंद है, मुझे काफी पसंद है, गाने का नाम है वन लव, लेकिन उसमें गाने का इंग्लिश का एक वर्ड नहीं है उसमें।
1: अच्छा, एक प्यार है ना उसका।
0: हाँ मतलब,
1: पर कुछ तो होगा ना एक प्यार से रिलेटेड
0: गाना है। हाँ, मुझे पता नहीं, मीनिंग पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक।
1: अच्छा,
0: बट इट सो दैट्स द ट्रेंड। सो ये गाने का नाम है फेल फॉर यू,
1: फेल फॉर यू, ठीक है।

0: song, right? So that was the song.
1: That was the song.
0: That was the song.
1: Haan, but I understood why it's called Fell for You.
0: Okay. ठीक है मेरे को अब तक गाने का मीनिंग नहीं मालूम बट मतलब बट आई अंडरस्टैंड
1: वो बोलता है ना कि मैं मतलब आई एम काइंड ऑफ द लिरिक्स काइंड ऑफ हिट द सेम सेंटेंस
0: राइट अभी जैसा वो एपी डिलॉन का गाना ठीक है एक्सक्यूजेस
1: एक्सक्यूजेस
0: ठीक है इंग्लिश गाना नहीं है वो ऑलराइट बट गाने का टाइटल एक्सक्यूजेस है सो है ट्रेंड है ये
1: ओके कूल अब मैं तेरे को जो बात बताने वाली थी हाँ तो जब मैं पामी आई थी तो उससे पहले मतलब सबसे पहले व्हेन आई केम टू न्यूजीलैंड इन 2020 आई लैंडेड इन क्राइस्टचर्च सो व्हेन आई वाज लैंडिंग इन क्राइस्टचर्च लिटरली तो मैंने प्लेन से आप देखते हो ना कि कैसा लग रहा है भाई अब नई कंट्री में आए हो
0: मेरे को विंडो सीट मिला नहीं था आई हैव नो आइडिया
1: अच्छा मेरे पास विंडो सीट था

0: तो मैं देख रही हूँ कि कैसे है नीचे, यू नो, सब कुछ. मुझे लिटरली आई कुड सी अ रिवर एंड द रिवर वॉज लिटरली ब्लूइश और लिटिल बिट ब्लूइश और ग्रेइश एंड इट वाज सो क्लीन. It was so clean. I could see from the top. It was so clean. Vaika Mariri.
1: Weave pattern river.
0: Yes, weave pattern river.
1: उसके ऊपर है ना research हो रहा
0: है. अच्छा.
1: हाँ.
0: Okay.
1: You go on. फिर मैं बताता
0: हूँ. Okay. तो river flow कर रहा है ऐसे करके. और आसपास बहुत beautiful पेड़ हैं. February का time है. और हम ऐसे land करे तो मुझे ऐसा लग रहा है यार ये तो painting है. हम painting के अंदर land कर रहे हैं. It was so beautiful.
1: मेरे को इसीलिए पता नहीं है, as in, उस टाइम पे मेरे को इसलिए पता नहीं चला था बिकॉज मुझे सीट मिली थी एकदम लास्ट कोपचे की जिसमें विंडो नहीं था. तो मैं एकदम ऐसा घुट के बैठा था. मैंने बोला था मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नींद आ रही है. जब मैं प्लेन में घुसा था तो मेरे को सीट पता चली. मेरे को तो लगा था कि हाँ ये सीट कुछ ज्यादा ही क्लॉस्ट्रोफोबी लग रही है. बट मैंने बोला मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने वो एसी का वेंट अपनी तरफ किया, जैकेट लिया और सो गया. मैं फिर बाद में कब उठा, जब भी अनाउंसमेंट हुआ कि अभी लैंडिंग की तैयारी हो रही है, क्योंकि बगल में जो बंदा बैठा था वो भी मोस्ट लाइकली वो भी हिंदी नहीं था. अच्छा. लग रहा था मेरे को. तो वो पता नहीं कुछ तो घिचमिड़ घिचमिड़ कर रहा था. तो उसके हिलने डुलने से मैं उठ गया था.
0: अच्छा.
1: एंड मेरे को पता था कि हाँ अभी उतरने का टाइम आ गया अपना, अभी अपन उठते हैं बस. सो आई डिड नॉट सी the land while landing.
0: Oh great. कभी तेरे साथ ऐसा हुआ, off topic, but कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तेरे को air hostess उठाने आई है कि बस अब खत्म हो गई है? Okay.
1: उतना कभी ऐसा हुआ ही नहीं.
0: मेरे साथ दो बार हुआ ऐसा. एक बार international flight में, एक ना domestic flight में. तो I went to a country in Africa. I went to Kenya, yeah. And I was coming back and I was so tired because I was so busy and moving around. मैं काम से गई थी. फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा tired हो गई. तो जब मैं आई तो मतलब I was sleeping कि फ़ोन बंद है, सब बंद है, सो जाओ. और I think मेरे को ये भी नहीं पता वो खाना कब लेकर आई और कब लेकर चली गई. Like I did not even take the food because I was sleeping like, probably I was snoring and sleeping. मस्त एकदम विंडो सीट मिला था, मैं सो रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ. और दिल्ली में लैंड हो गया प्लेन.
1: अच्छा.
0: मतलब मैं वापस आ रही थी, वो लैंड हो गया एंड आई डिडंट रियलाइज कि वो लैंड हो गया. फाइनली एयर होस्टेस हैड टू कम एंड टेल मी
1: मैडम उठ जाओ.
0: हाँ मतलब मैंने देखा मेरे आसपास की सीट खाली हो रही है. मतलब दो चार लोग थे प्लेन में, वो भी जा रहे थे. तो यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया.
1: नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ प्लेन में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ.
0: क्योंकि आई ऑलवेज पुट माई सीट बेल्ट ऑन. आई कीप पुटिंग माई सीट बेल्ट ऑन ऑलवेज. तो ऐसा है नहीं कि मुझे दोबारा से लगाने की जरूरत पड़ेगी भाई टेक ऑफ हो रहा है या फिर लैंडिंग हो रही है. तो लगा हुआ है, मैं सोई हुई आराम से मस्त एकदम.
1: Going off topic, मेरे को कल एक भलता सपना आया. पता
0: भलता, what is भलता?
1: भलता मतलब अजीब.
0: अजीब क्या सपना आया?
1: Okay, so जब भी वो मार्वल यूनिवर्स का जो ट्रेंड था ना, वो जो फेज था ना मार्वल यूनिवर्स का, आयरन मैन एंड दिस एंड दैट, वो सब हल्क वल्क सब कुछ, तो हम लोग मार्वल मूवीज रेगुलरली देखते थे. मतलब मार्वल मूवी है देखने का ही देखने का. ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरी मूवी नहीं देखते थे. हम दूसरी मूवीज भी देखते थे. हम अच्छी मूवीज देख,
0: भाई की मूवी को छोड़ के तुम सब देखते
1: थे. अरे भाई की मूवी भी देखी हम लोग ने.
0: क्योंकि
1: तभी कुछ और था नहीं.
0: अच्छा.
1: और हम लोग शिफ्ट हो गए थे. मैं चला गया था बदलापुर, वो आ गया था अंबरनाथ. एंड वी वर लाइक यार इधर कुछ है भी कि नहीं है कि हम लोग खाली मतलब जाके नदी में बैठने का.

0: तो तभी टाइगर जिंदा लॉन्च हो गई थी.
1: टाइगर जिंदा ये कौन सी मूवी है
0: भाई? की मूवी है मेरी नहीं. हाँ टाइगर जिंदा लॉन्च हो गई.
1: एक तो टाइगर तो आई नो.
0: हाँ तो टाइगर जिंदा है उसका सीक्वल है.
1: अच्छा.
0: क्योंकि टाइगर में दिस वाज अ क्लिफहैंगर कि टाइगर टपक गया.
1: टाइगर मर जाता है.
0: हाँ बट दैट वाज अ क्लिफहैंगर.
1: ओके
0: तो उसका क्लिफहैंगर तो उसका सीक्वल आया टाइगर जिंदा है.
1: जिंदा है जिंदा है
0: जिंदा. एनीहो सो दैट वाज द टाइम व्हेन We would wait. और तभी ऐसा regular Marvel movies आती थी. So this was kind of a highlight for us.
1: अच्छा.
0: तो मेरे को सपना आया कि Marvel का कोई नया picture निकला है.
1: अरे वाह.
0: और मैं और मदन हम लोग जा रहे हैं अभी picture देखने को. और मैं खड़ा हूँ मेरे घर पे इधर न्यूजीलैंड में.
1: अच्छा.
0: और मैं मस्त में बाहर देख रहा हूँ और मैं उसको बोल रहा हूँ कि अरे क्या मस्त कलर है आज. क्या मस्त कलर दिख रहा है आसमान में. और मैरी बोल रहा है तू टाइम पे निकलने वाला है कि तू खाली आसमान देखता रहेगा. बोला हाँ निकलता हूँ निकलता हूँ. एंड देन बस खत्म वो सपना खत्म हो गया.
1: ओके सो बेसिकली सपने में तो मूवी देखने जा रहा था बट न्यूजीलैंड के स्काई के कलर्स ने तुझे इतना अट्रैक्ट कर लिया कि तू मूवी की लेट हो गया मूवी के लिए.
0: नहीं
1: मतलब होते होते रह गए.
0: मैं हूं वो उधर है
1: और तुम दोनों मूवी देख रहे हो. हां ऐसा होता है ना.
0: मूवी जाने वाले अभी.
1: ऐसा होता
0: थिएटर में.
1: एनीवे यू प्ले अ गेम प्ले अ सॉन्ग एंड देन आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग.
0: अच्छा
1: ऑन दिस.
0: अच्छा कौन सा गाना बजाओ?
1: कोई गजल बजा दीजिए.
0: जाएगा नहीं ये.
1: What?
0: इसके साथ जाएगा नहीं.
1: किसके साथ नहीं जाएगा? तेरी पर्सनालिटी के साथ.
0: एक मिनट. क्या
1: किसके साथ नहीं जाएगा गजल?
0: अभी जो गाने बज रहे हैं ना उसके साथ गजल बैठेगा नहीं बीच में.
1: अरे तो कोई थीम थोड़ी ना है.
0: ओके सो अनदर पंजाबी सॉन्ग. ये गाना मेरे को एक्चुअली पसंद है.
1: अच्छा
0: अगेन गाने का टाइटल है हे लव.
1: Hey love, अच्छा अब देखते हैं उसमें क्या है.
0: ठीक है सूखे का गाना.
1: ओके
0: Hey love.
1: चलो ठीक है सूखा सूखा ही love.

0: सो इस गाने में मुझे हे लव समझ नहीं आया.
1: ओके,
0: मतलब कि जो भी गाने के लिरिक्स थे उसमें सा हे लव जैसा कुछ समझ नहीं आया मुझे.
1: हे लव मतलब
0: हे लव, हाँ मुझे समझ में आया, मतलब इंग्लिश
1: बुला रहा
0: है, हाँ लेकिन उस गाने में नहीं बुला रहा. एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.
1: अच्छा,
0: सो प्रोबेबली नॉट ऑल सॉन्ग्स आर टाइटल्ड वेरी वेल.
1: ये नहीं मालूम, वैसे आई हैव अ थ्योरी.
0: या
1: आई हैव अ थ्योरी बिहाइंड दिस कि द रीजन व्हाई इट ट्रेंड है कि गाना पंजाबी है लेकिन टाइटल इंग्लिश है. इसका रीजन ये है कि ये जितने भी गाने हैं इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो हीरोइन है वो भारतीय नारी तो नहीं लग रही, मतलब आई मीन दिस ना.
0: तो क्या हो गया?
1: तो मतलब ये हो गया कि उसको शायद से पंजाबी नहीं आती रहेगी ना.
0: अच्छा,
1: तो उसको समझाने के लिए कि गाना क्या है बस इंग्लिश टाइटल दे दिया कि गाने का द गाना है इज अबाउट लव या फिर गाना इज अबाउट आई फेल फॉर यू.
0: आई फेल फॉर यू फिर भी मतलब थोड़ा सा मीनिंग जा रहा था वहां पर, इसका नहीं जा रहा. बट एनीवे लेट्स नॉट यू नो डिस्करेज देम.
1: नहीं नहीं, आई एम
0: इंग्लिश में रखें हिब्रू में रखें हमें क्या जा रहा है,
1: कोई फर्क नहीं. मेरे को गाने पसंद है, मैं सुनता हूं
0: बस.
1: सो ये गाना मेरे को पसंद है. And then there is also another song by the same guy, Attraction. वो भी पसंद है मेरे को.
0: अरे वाह, अब वो next song क्या है?
1: नहीं वो नहीं बजेगा, वो शायद अगली बार बजाएगा मैं.
0: Okay. Break लेने का time हो गया I think.
1: How is this happening? How are you keeping the time?
0: See, सीख रहे हैं हम समय के साथ.
1: अच्छा, alright, ठीक है. One or two break.
0: Break.
2: Community Notices on MPR.
3: Whatever your problem or question, Citizens Advice Bureau is here for you.
4: We're here to listen.
5: We're here for your rights.
6: We're here person to person, kanohi ki te kanohi.
4: We're here for free.
7: We're here for everyone.
8: We're here to help.
3: Not sure? Ask us. Citizens Advice Bureau. 0800 367 222 cab.org.nz or call in to one of our sites throughout New Zealand.
2: Community notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at mpr.nz or call 06 357 9340.
9: Hare Krishna, dear listeners. You are informed that you may tune in every Monday at 11 a.m.

0: बहुत अच्छा
1: लगा ही था मेरे को लगा ही था मेरे को कोई ना कोई किधर ना किधर तो आम का टॉपिक अभी निकलेगा ही निकलेगा एज एन आई एम नॉट सेइंग इट विद यू आई एम सेइंग
0: या विद एनीवन
1: या ठीक है मतलब जैसा इधर अपने इधर मे का टाइम आ जाता है ना तो सब लोग बोलते हैं यार आम आएंगे अभी आम आएंगे
0: लेकिन आते बहुत लेट है
1: कभी भी आए मतलब लोगों का अभी से ही चालू रहता है
0: ऑफ कोर्स क्यों नहीं रहेगा यार दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर फ्रूट्स इन द वर्ल्ड
1: ऐसा नहीं है
0: सॉर्ट मुझे मैंगोस ओके इंडियन मैंगोस
1: नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा नहीं
0: नो नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इन ओके इंडियन मैंगोस आर सॉर्ट आफ्टर इन द वर्ल्ड
1: श्योर ओके ओके
0: तो इंडिया में क्योंकि बहुत वैसे तो अभी हर सीजन में आपको आम मिलता है मतलब स्टोरेज का पर जो टेस्ट है ना और खासकर वो कुछ वैरायटीज ऐसी होती है जो कुछ दिनों के लिए आती है मतलब आपके पास मार्केट में वो 15 या 20 दिन के लिए होगी या 1 महीने के लिए छोटे छोटे आम आते हैं इतने एक उंगली के साइज का आम आते हैं छोटे उंगली से थोड़े से बड़े होंगे शायद वो मोटे मोटे होते हैं और उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है वो बारिश में आते हैं जब सीजन खत्म हो रहा होता है बट यू नो वी यूज टू वेट फॉर दैट तो हम हर चीज पहले हम वेट करते थे अभी ये आएगा एक आम होता है उसका नाम होता है सफेदा वो आएगा वो थोड़ा सा हल्का हल्का वाइट होता है बड़ा वाला होता है बड़ा वाला मैंगो वो ठीक लगता है नॉर्मल खा लेते हैं फिर उसके बाद आता है दशहरी जो मेरा फेवरेट है इट इज वेरी स्वीट और टेस्टी होता है उसको चूस के खाते हैं फिर आते हैं चौसा ग्रीन कलर का आम होता है वो और वो भी खाते हैं बहुत ऐसे काट के या फिर
1: लंगड़ा होता है
0: एक लंगड़ा होता है
1: एक तोता पाए
0: एक होता तोता पाए होता है और एक ये होता है ये छोटा वाला क्या बोलते हैं उसको जो इतना आम होता है
1: वो नहीं पता हूँ
0: तोता पाए इज लाइक उसका शेप बहुत अलग सा होता है ना
1: उसका जो शेंडी होता
0: है शेंडी
1: वो तोते की चोंच की तरह लगता है
0: हाँ हाँ
1: इसके लिए उसको तोता पाए
0: रत्नागिरी आता है केसर आता है कितने आम आते हैं एक्चुअली इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैंगोस मैंगो वैरायटी इन द वर्ल्ड
1: ओके
0: आई एम नॉट सरप्राइज्ड
1: सी इवन आई लाइक मैंगोस इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट दैट आई डोंट फॉन ओवर मैंगोस
0: Okay.
1: कोई मेरे को खिलाएगा I'll be very happy बोला हाँ मस्त लगता है खाने को बहुत अच्छा लगता है मेरे को but ऐसा नहीं है I'm not crazy behind it fan following नहीं है मेरा ऐसा आम के लिए
0: okay
1: हाँ
0: तो मिला तो मिला नहीं मिला तो नहीं मिला
1: हाँ नहीं मिला तो नहीं मिला because see I don't even remember the last time I had hapu samba
0: what is that
1: Alfonso mangoes
0: मैंने कहीं देखा है किसी जगह पे
1: क्या
0: हापूस आम
1: हाँ दुकान पे हिंदी मराठी में ही लिखा रहता हापूस आम हापूस आम्बा
0: ओके
1: वैसे ऐसा पंजाबी में कुछ और अदर मतलब कुछ और वर्ड है क्या आम के लिए
0: नहीं आम ही बोलते हैं
1: अच्छा ओके
0: और मराठी में
1: उसको आंबा बोलते हैं
0: आंबा तो हम कई बार उसे अम्मी ऐसे ना छोटी होती है तो अम्मी बोलते हैं बट ग्रीन वाले जो आम होते हैं ना अचार वाले जिसकी चटनी भी बनती है
1: उसको कैरी बोलते हैं
0: हम अम्बी बोलते हैं
1: उसको कैरी बोलते हैं
0: अच्छा हम अम्बी बोलते हैं
1: मराठी में उसको कैरी सॉरी हिंदी में उसको कैरी कहते हैं मराठी में उसको कैरी कहते हैं
0: करी
1: कैरी या
0: ओके नहीं हम लोग उसको पंजाबी में ऐसे बोल देते हैं अम्बी
1: ओके
0: तो कहने का मतलब ये है कि आम जैसी चीज अब जैसे मेनी पीपल दे गो टू वियतनाम एंड दे जस्ट लव द कोकोनट वाटर
1: इधर मिलता है बॉटल में
0: नहीं मिलता है पर वो फ्रेश पीने का मजा ही अलग है ना तो ऐसे आप जहां जाते हो वहां का फ्रूट खाओ देखो पता है को पता है मेरे को लीची खाए हुए कितने साल हो गए
1: हाँ इधर आई थिंक मैंने एक ही बार खाई है
0: अच्छा खाई है
1: हाँ वैसे ही इंडियन स्टोर में मिली थी

0: अभी तो मेरे को याद भी नहीं है कौन से स्टोर से, इंडियन स्टोर से मिली थी, ज्यादा नहीं ली थी मैंने, थोड़ी सी ली थी और बस खा लिया। और फिर
1: फ्रोजन मिली थी?
0: नहीं, फ्रेश।
1: अरे वाह।
0: हाँ, तभी इंपोर्ट की थी। एंड मैं जब इंडिया गया था तभी मैंने खाया रहेगा। बस लीची का आइसक्रीम मेरे को पसंद है। ओके,
1: लीची का आइसक्रीम।
0: ओके, अब भी वही बोलने वाला था मैं। ऑकलैंड में ना एक जगह है, अभी मैं वो स्ट्रीट का नाम भी भूल गया। वो स्ट्रीट का नाम मैं एक दुकान से याद रखता हूँ।
1: अच्छा।
0: देयर इज दैट फ्रोजन आइसक्रीम प्लेस व्हाटएवर, वो रात तक खुली रहती है।
1: ओके,
0: इसीलिए मेरे को पता है वहां पे लीची आइसक्रीम मिलती है और वो बहुत अच्छी बनाता है।
1: मैंने मैंने ऐसे बहुत सारे फ्लेवर सुने हैं
0: वो रोल आइसक्रीम।
1: अच्छा अच्छा, रोल, वो जो रोल करके
0: रोल करता
1: है। हाँ, अच्छा अच्छा, आई गेट इट, आई गेट इट। मैंने एक चीज देखी है कि आजकल बड़े अलग अलग फ्लेवर्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आ गए।
0: किस में?
1: आइसक्रीम्स में।
0: हाँ,
1: एक माचा, चलो माचा तो ठीक है, मतलब
0: हाँ, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ द आइसक्रीम्स दीस डेज इज नॉट आइसक्रीम।
1: अच्छा, इट इज,
0: इट इज फ्रोजन प्रोडक्ट।
1: ओके,
0: जैसे येच, ये जो रोलिंग आइसक्रीम जो है ना, इट्स नॉट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं है वो।
1: ठीक है,
0: इट इज फ्रूट पल्प, मे बी क्रीम या फिर दूध, एंड ऑल ऑफ दिस इज मैश्ड बट इट इज डन ऑन अ कोल्ड सर्फेस।
1: ओके, हाँ, ताकि वो बार बार जम जाए।
0: हाँ, तो वो जो रादर देन दैट बिकमिंग अ स्मूदी, दैट बिकम्स फ्रोजन पार्ट दैट फील्स लाइक एन आइसक्रीम। होता वो स्मूदी है लेकिन आइसक्रीम नहीं होता वो, इसीलिए यू आर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स। For a, for anything to become an ice cream, you have to whip it so that उसके अंदर air ये हो जाए, amalgamate हो जाए।
1: Okay.
0: इसके लिए घुमाते हैं उसको, उसको time लगता है।
1: Time लगता है।
0: हाँ, लेकिन ये जो बाकी चीज होती है, it's not ice cream। जैसे gelato, gelato is not gelato। इसलिए gelato में आपको बहुत सारे flavors मिलते हैं।
1: मैं कभी गई नहीं जिलेटो।
0: अरे जगह नहीं है कोई,
1: मतलब मैंने कभी खाया नहीं जिलेटो।
0: हाँ, तो इसीलिए देयर आर अदर फ्लेवर्स।
1: ओके,
0: ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम में फ्लेवर्स नहीं है।
1: एक मैंने एक बार बहुत अजीब सा फ्लेवर खाया था, गुआवा आइसक्रीम।
0: ओके,
1: मुझे लगा, मैंने मंगवा तो ली, लगा यार मैं खा पाऊंगी क्या नहीं। एंड एक और चीज थी, गुआवा आइसक्रीम विद कोक सिरप। कोक, कोक होती है ना मरीज।
0: साउंड्स हॉरिबल,
1: साउंड्स हॉरिबल, बट हमने खाई एंड इट वाज सरप्राइजिंगली टेस्टी।
0: टेल मी, ये दिल्ली में मिला था?
1: हाँ, तो
0: ओके, नहीं ठीक है, अच्छी बात है।
1: अरे टेस्टी थी,
0: आई एम श्योर, जैसे दूध सोडा भी टेस्टी होता है।
1: दूध सोडा, हाँ लोग पीते, लोग वो कोक सोडा पीते।
0: Which?
1: Okay, ठीक है, अभी
0: दूध कोक,
1: दूध कोक, वो कहते शक्ति आ जाएगी और ठंडक भी आएगी।
0: हाँ, शक्ति आएगी और ठंडक भी आएगी।
1: हाँ, अब बताओ कौन सा गाना सुना रहे हो
0: अभी? भिक्की कौशल का एक गाना है।
1: Okay, wow.
0: Bad News करके एक पिक्चर है।
1: Bad News, okay.
0: उसका गाना है जानम।
1: जानम। जानम देख लो।
0: नहीं, वो वीर जरा का गाना है, बहुत अच्छा गाना है।
1: नहीं, वो उतना अच्छा नहीं लगा रहे हम
0: नया कुछ
1: नया सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके,
0: ऑलराइट।

0: तो ये गाना मतलब ठीक है, it was very slow.
1: I like the singer.
0: Who's the singer?
1: बहुत ट्रेंड में आजकल.
0: क्या नाम है?
1: विशाल मिश्रा.
0: Okay.
1: मुझे इसका आवाज अच्छा लग रहा है.
0: क्यों?
1: वो अपनी आवाज को बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट कर पाता है.
0: ओके, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉन्ग.
1: यप.
0: वाओ.
1: और मेरे को ऐसा लगता है.
0: तूने अभी तक कौन से उसके वो देखे हैं रिजल्ट, मतलब कौन से उसके ऐसे वो देखे हैं गाने?
1: देखे
0: मतलब सुने,
1: सुने. अच्छा, आवर बिलवेड रणवीर कपूर.
0: ओह माय गॉड.
1: उनकी एक पिक्चर आई थी, एकदम बल्टी पिक्चर आई थी.
0: बल्टी?
1: हाँ.
0: कौन सी?
1: एनिमल.
0: ओह या या, दैट वाज बल्टी. व्हाटएवर बल्टी इज.
1: So animal is balti.
0: So that's what I'm saying. Yeah. Ki whatever balti is, it actually sounds ki it is apt for that movie.
1: Yeah. उस पिक्चर में एक गाना.
0: ठीक
1: है. गाने का नाम है पहले भी मैं. रोमांटिक गाना है.
0: हाँ, पहले भी मैं. हाँ हाँ, याद है मुझे.
1: नाइस सॉन्ग.
0: अच्छा सॉन्ग है वो.
1: अच्छा गाना.
0: वो इन्होंने गाया?
1: Yeah, वो इन्होंने गाया.
0: अच्छा, विशाल
1: मिश्रा.
0: मिश्रा.
1: ओके. एंड there is this one song, मतलब नया गाना नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं है, पर समझ ले 3 या 4 साल पुराना रहेगा. And I kept feeling that ये गाना अर्जुन कनुंगो, there is this artist, singer है, pop artist है, उसने गाया है.
0: अच्छा.
1: And I kept feeling कि यार सही है, अगर अर्जुन ने गाना गाया तो अच्छी बात है, गुड. मतलब मेरे को पता

0: I mean, though Bollywood mein bhi gana gaata hai. He's actually a wo angrezi gaane banata hai, hindi bhi gaata hai, but western
1: gaane zyada hai.
0: To mere ko laga tha sahi hai, theek hai, but nahi. That song was also or is also sung by Vishal Mishra. So Vishal Mishra reminds me of Arjun, and Vishal Mishra also reminds me of Ash King. But jab hi I listen to Vishal Mishra, I like listening to Vishal Mishra.
1: Okay. Matlab usi ke song sunne ka bar bar man karta hai?
0: Nahi, aisa nahi bolunga. It's just that like I said, wo modulate bahut acche se karta hai.
1: वो एक एक वर्ड को समझता है
0: ये बोलो क्या
1: और अब मतलब ऐसा होता है कि कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाना गा रहे हैं और कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाने का जो मीनिंग है उसके इमोशंस के साथ मतलब इमोशंस के साथ गा रहे हैं तो द मीनिंग कम्स आउट वेरी वेल
0: देयर इज दिस वन थिंग व्हिच आई डोंट रियली लाइक अबाउट मेनस्ट्रीम movies या movie के गाने
1: अरे हाँ आजकल तो
0: नहीं there is this one particular thing और ये ऐसा नहीं कि अभी से ही हो रहा है ये बहुत पहले से हो रहा है I don't know why that is कि कोई एक अच्छा सिंगर है उससे गाने गवाएंगे फिर उसी के गाने चलते रहते हैं ठीक है वो गाने बहुत अलग अलग के गाएगा अलग टाइप के गाएगा but for a period of say 5, 7, 10, 12 years बस उसी के गाने चलते रहते हैं गाने बहुत अच्छे होते हैं इसीलिए तो वो ट्रेंड में रहता
1: exactly
0: and then suddenly वो फिर बंद हो जाता and then some singer and then suddenly
1: he takes a break ना
0: नहीं and then suddenly a new singer is in trend now जैसे
1: I don't know
0: जैसे थोड़े टाइम पहले तक मोहित चौहान वाज एवरीवेयर ठीक है उसके बाद में अरिजीत सिंह वाज एवरीवेयर ठीक है अभी अरिजीत सिंह इज नॉट दैट मच उतना ट्रेंड में नहीं है ठीक है जितना पहले था ठीक है अभी विशाल मिश्रा का ट्रेंड शुरू हो रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है अभी तक आया नहीं है वहां पे
1: पर जैसे तूने बताया ना कि वो जैसे गायब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद
0: एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द सिंगर्स
1: इट इज टू डू विद देयर
0: इंडस्ट्री राइट द माय क्वॉर्म इज और ये मैं पहले बोल चुका हूँ माय क्वॉर्म इज मेरे को ऐसा लगता है कि अ गुड सिंगर डेवलप्स with his age his singing matures with his age
1: I would say the same for an actor
0: kyunki
1: artist ho na aap
0: right
1: to aapko seekhna padta hai aapko break lena padta hai
0: ha abhi jaise KK theek hai wo jab bhi aaya tha tabhi wo jis tarah se gana gaata tha theek hai and then towards the peak matlab absolute peak the Imran Hashmi phase उस तरह से वो वाले गाने उसने जिस तरह से गाए हैं वेरी डिफरेंट बट देन यू कैन सी कि हाउ ही हैज मैच्योर्ड पहले भी बहुत अच्छे गाने गाता था बट देन द सिंगर डेवलप्स अ फ्लेवर राइट
1: और एक यू नो जो उसके श्रोता होते हैं तो उसको सुनने वाले होते हैं वो पहचान जाते हैं
0: राइट
1: और उनको समझ में आता है कि अभी क्या इमोशंस है इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉन्ग में ऑफ कोर्स सब कुछ जरूरी है म्यूजिक भी बहुत अच्छा जरूरी है लिरिक्स जरूरी है बट जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगर होता है ना जो भी चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में गा रहा हो बट यू कैन समहाउ अंडरस्टैंड द इमोशंस
0: यस इसीलिए काफी बार काफी सारे गाने दो अलग सिंगर से गवाए जाते हैं
1: अच्छा जस्ट टू एक्सपेरिमेंट
0: हाँ ये नहीं पता एक जस्ट टू एक्सपेरिमेंट और व्हाटएवर बट होता है ऐसे बहुत बार होता है और दोनों गाने बहुत फेमस होते हैं ऑन टॉप ऑफ माय हेड मेरे को अभी याद आएगा तो मैं याद दिलाता हूँ एक सलमान खान की पिक्चर थी लकी
1: हाँ हाँ याद है मुझे
0: ठीक है उसमें थी स्नेहा उलाल
1: लकी लिप्स

0: गाना भी था उसमें.
1: तो उसमें गाना है सुन जरा,
0: सुन जरा,
1: ठीक है. वो दो दो दो सिंगर्स ने गाया, एक सोनू निगम ने, ठीक है. तो पहले सोनू निगम का फेमस गाना,
0: अच्छा,
1: ठीक है. लेकिन ये ज्यादा पॉपुलराइज किया ही नहीं गया था, या फिर हुआ नहीं था, या फिर मेरे को मालूम नहीं है कि सेम गाना अदनान सामी ने
0: भी गाया है.
1: आई पर्सनली प्रेफर अदनान सामी का गाना.
0: ओके,
1: आई डोंट नेसेसरीली लिसन टू अदनान सामी सॉन्ग्स. वेरी टैलेंटेड सिंगर अगेन, बट दैट पर्टिकुलर सॉन्ग I prefer listening to the Adnan Sami version.
0: ऐसे बहुत सारे, नहीं ऐसा पहले भी होता था, ये तो बहुत सारे, बहुत पुराना ट्रेंड है.
1: हाँ,
0: कि अलग अलग सिंगर से गवाओ और देखो कि, क्योंकि हर किसी का पिच अलग है, हर किसी की आवाज अलग है और लोगों को पहचान में आती है.
1: हाँ, तो the point that I was making is कि ये जो अब फ्लेवर निकालते हो ना, ये 10 साल हम खाली मोहित चौहान को सुनेंगे.
0: हाँ.
1: और उसके बाद में अपन खाली अरिजीत सिंह को सुनेंगे. और उसके बाद में अपन खाली विशाल को सुनेंगे. और उसके बाद में अपन खाली सोनू को सुनेंगे. Rather than doing this, why not have them sing at the same time? अरिजीत सिंह को नहीं गवाने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
0: he should remain in the scene.
1: हाँ, he should remain, he should stay in the scene. Right. That is how, that is what my point is.
0: No, they do stay in the scene. वो थोड़ा break लेते हैं.
1: नहीं, किधर? Where is Mohit Chauhan?
0: Tell me the last. अभी हाँ. Actually, Mohit Chauhan, हाँ, सही बोल.
1: Tell me where is Sonu Nigam?
0: Sonu Nigam. Oh, he has disappeared. That's correct.
1: वही तो मैं कह रहा हूँ. तो it is not the singers.
0: But he was a very, उसका voice बहुत ही unique था.
1: अभी भी अच्छा है.
0: हाँ,
1: अभी भी काफी अच्छा है.
0: हाँ.
1: अभी भी he is very talented.
0: तो
1: ऐसा नहीं बोल सकते अपन.
0: तो आप हमें कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं?
1: अभी मैं कौन सा सॉन्ग सुना रहा हूँ? ओके, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 आई है.
0: 3 आ गई है?
1: हाँ, 3 भी आ गई है.
0: चलो
1: गुड. अभी नहीं है,
0: टाइम पास
1: हो गया उसको. टाइम हो गया अभी उसको.
0: अच्छा, टाइम भी हो गया.
1: हाँ, टाइम भी हो गया उसको.
0: गुड, टाइम पास.
1: उसका गाना है, और उसका गाना है जानम समझोना.
0: समझोना, ओके.
1: तो अपन वो सुनेंगे और उसके बाद में अपने को रैप मारना पड़ेगा.
0: अरे क्या बात कर रहे हैं, टाइम हो गया.
1: हाँ, टाइम हो गया है. तो अगर गाना फिट होएगा तो मैं फिट करेगा, अगर फिट नहीं होएगा तो मोस्ट लाइकली वो गाना अगली बार बजेगा. तो मनावाटू, धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू अस. और थोड़ा बाहर निकलो, थोड़े रंग देखो,
0: ऑटम के रंग देखो, पतझड़ के
1: ऑटम के रंग देखो, सेल्फी वेल्फी निकालो. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच शिल्पी जी आज मिलने के लिए.
0: थैंक यू मलार जी, और थैंक यू मनावाटू. फिर मिलते हैं अगले हफ्ते.
1: फिर मिलते हैं अगले हफ्ते.
0: ओके, बाय.